पयो जिसका सब सुधारो जे को खावे जे को पुंच तिसका हो उधारो ए वस्त तजी न जाई नित नित राख और तारो तमस।

प्यारे पंथ खालसा जन बख्शो जी न माण्यो के माण दे ताण्यो के ताण दे ओट्यो की ओट धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज आप जी के हजूर चरण कमलों पास अरदास बेनती है जी आ

0: मैं अपने वल्लों आप जी दे चरणा दे अंदर कुछ भेटा करना चाहुंदा हां। महाराज कृपा करो जे तुसी कबूल करो ते मैं आप जी दे चरणा विच कुछ भेटा करना चाहुंदा हां।
1: जो सेवा तुमरी होए जाए
0: ताकि मैं भी अपने वल्लों जेड़ा है आप जी दे दर कर कोई सेवा कर सकां।
1: बनहो सफल शांति मुझ आए।
0: महाराज मेरी ए बेनती प्रवान करो ताकि मेरे मन नूं आप जी दे दर कर दी ए सेवा करके शांति प्राप्त होवे।
1: बिकस प्रभु मुख तां सो कही।
0: गुरु अमरदास महाराज अकबर नूं कहण लगे
1: किसु वस्त की ख्याश ना रही।
0: भई सानू किसे वस्तु दी ख्वाहिश नहीं है। हुण दिल्ली दा बादशाह है अकबर और महाराज नूं बेनती कर रहा महाराज मैं कुछ अपने वल्लों तुहानू जिहड़ा है

अरदास करदा है, हे सचे पातशाह भुजंगी नू नाम बख्शो। ते भुजंगी दे की अर्थ ने, सप दा बच्चा और की है, भुजंग सप, भुजंगी सप दा बच्चा। हे सतगुरु सचे पातशाह भुजंगण नू नाम बख्शो, सप दी बच्ची नू नाम बख्शो। खिड़े मत्थे तस्लीम कर लिया, कबूल कर लिया, ठीक है तुसी सप आख्या ते ठीक है, पर हर एक लिए असी सप नहीं हाँ, अमृत हाँ। चहा शुद्ध के चों बच्चे गां कुश्ताचार, के बाकी बमा बस्त पेची दा मार, चे मर्दी के अखगर खामोशां कुनी, के आतिश दा मारा फिरोजां कुनी। इस श्री मुखवाक पातशाही दसवीं है, जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की रचना। की होया तू चार चिनगारियां बुझा दितियां ने, ते शोले भड़का दिते ने। कहिंदे ने अथाह जुलम जिथे हो जाए उस चो रोस जन्म लेंदा है। किसे वक्त इकबाल ने एक बड़ा कीमती शेर लिखिया सी, ये चमन ये रोशन लाला गुल होने दो जो वीरा होते हैं, तकरीब जनू के पर्दे में तामीर के सामा होते हैं। बड़ा कीमती उसका शेर है, ये चमन ये रोशन लाला गुल होने दो जो वीरा होते हैं, तकरीब जनों के पर्दे में तामीर के सामा होते हैं। कहिंदा हर बर्बादी देच कोई नवी उसारी होंदी है, हर तबाही देच कोई नवी तामीर होंदी है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फिलोसफर इस ढंग नाल सोचते ने, दार्शनिक इस ढंग नाल जो है सोचते ने, उन्हां दी इस ढंग दी जो है विचार आउंदी है। सिख इतिहास ज्ञानियां दा इतिहास, दानियां दा इतिहास, भगतां दा इतिहास, सूरबीरां दा इतिहास, शहीदां दा इतिहास, इतने चूहे लग गए ने टुकी जांदे ने, टुकी जांदे ने, टुक दियो। मूश दीवा में शवद, दीवान ऐसा होवे जैसे के मूश चूहे, हुक्मरान ऐसा होवे जैसे के बगयाड़, वजीर ऐसे होवन जैसे के कुत्ते। गुर्ग मीरो सग वजीरो मूश दीवा में शवद, दूसरी पंक्ति, जाग जाहिद हर सनासी बूम आलम में शवद, जाग जाहिद हर सनासी। जाहिद लोग धार्मिक बंदे, धर्म दे मुखी ते धार्मिक बंदे ऐसे हवन जैसे के खोते। खरशनासी उन्हां दी पहचान खोतियां दी तरह हो गए। क्यों ऐसा क्यों कह दिता इस फकीर ने? पुराने जमाने बार बरदारी दा कम, ट्रांसपोर्ट दा कम खोतियां तो ही लिया जांदा सी। एक थां तो दूसरी थां ते जाना है, माल एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचाना है, तो खोतियां दे आसरे ते सारा सिलसिला हुंदा सी। खच्चर खोते एक पिंड तो दूसरे पिंड, एक शहर तो दूसरे शहर माल लै जांदे सन, हत्ता के एक मुल्क तो दूसरे मुल्क। सादी कहिंदे खोते दे उत्ते 100 पोथियां कुरान शरीफ दियां लद देईए, तो वह एक पिंड तो दूजे पिंड लै जाए, तो यह जिहड़ा खोता है मौलवी फाजल बन जाएगा, फकीर साई बन जाएगा, वली अल्लाह बन जाएगा, कोई खुदा शनास हो जाएगा अगर ये लद के लै गया। हूबहू उदाहरण वजों इंज कह दईए, अगर एक खोते देते 100 गुटके 100 पोथियां गीता दे लद दईए, तो वह एक शहर तो दूजे शहर पहुँचा देवे बेचारा खोता, तो क्या वह भगत जी बन जाएगा? उसे ही खोते देते 100 सुंदर गुटके लद दईए, तो एक पिंड तो दूजे पिंड पहुँचा देवे, तो हुण एक खोता गुरु का सिख बन जाएगा, ब्रह्मज्ञानी बन जाएगा, आत्मज्ञानी हो जाएगा, लद के लै गया। पिठ ते धर्म ग्रंथा नू लदर के कोई खोता वली अल्लाह नहीं हो जांदा, भगत नहीं हो जांदा, ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जांदा। ते दिमाग दे उत्ते जिसने गीता नू लद लिया है, गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी सिर्फ दिमाग विच है, याद है, व्यवहार विच नहीं है। इहदे व्यवहार विच ने, व्यवहार विच ते कठोरता प्रगट आउंदी है, व्यवहार विच ते क्रोध प्रगट आउंदा है, व्यवहार विच ते ईर्ष्या है, व्यवहार देखते हंकार है। उन दिमाग दे सुखमनी साहब भी है,

0: ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਪੜਦਾ ਬਾਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੀ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੀ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਆਉਣ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਬਸ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਝ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ ਬੜੀ ਬਾਣੀ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਪਣਾ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੋਣ ਜੈਸੇ ਕਿ ਖੋਤਾ, ਬਸ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨ, ਜ਼ਾਗ ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਰਸ਼ਨਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਆਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੋਵਣ, ਐਸੇ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਆਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆਂਕੜੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਈਏ। ਜ਼ਾਗ ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਰਸ਼ ਨਾਸੀ ਬੂਮ ਆਲਮ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ, ਬੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਲੂ ਨੂੰ, ਪਰਜਾ ਇੰਜ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੂ, ਉੱਲੂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਬਾਹ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਲਾਹੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਦਾ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਕਿਧਰ ਜਾਏ, ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਅਯਾਰੀ ਹੈ, ਫਕੀਰੀ ਵੀ ਮਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇ ਮਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਕਾਰ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਰੱਜ ਕੇ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੋ ਧੋਖਾ ਖਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਨੇ ਤੀਜੀ ਦਫ਼ਾ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧੋਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜ ਦਸੀ ਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਮੁਨਸਿਫ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਨਸਿਫ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਇਸਨੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਇਤਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਨਸਿਫ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ, ਵਰਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਧੋਖਾ ਖਾਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। अंधी रही है तो ज्ञान भी होनी। बूम आलम में शब्द पर जल इंज होवे जैसे उल्लू हनेरे दे कख ना समझ। इस शब्द का प्रयोग गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी किया। संपद दौल झोल संग झोलत माया मगन फिरत घुगना। पंजाबी दे उल्लू नु घुगू कहते हैं। इंज घूमे जैसे उल्लू हनेरे कख नहीं समझ, कुछ भी नहीं पता सच्चाई की है, असलियत की है, हकीकत की है। जाग जाहिद खर्शनासी बूम आलम में शब्द। तीसरी पंक्ति दुस्द मुहाफिज बद बही खा शैतान नाजम में शब्द। दुस्द कहने ने चोर नो, मुहाफिज रखवाला कौन होवे? चोर, चोर रखवाले अमन। ते इंतजामी ढांचा किस दे कोल होवे? शैतान दे कोलो। नाजम ओ होवे इंतजाम करने वाला कौन होवे? शहर दा शैतान। रखवाली करने वाला कौन होवे? चोर। धार्मिक बंदे कैसे होवन? खोते। हुक्मरान कैसा होवे? बगयाड़। वजीर कैसे होवन? कुत्ते। और दीवान कैसे होवन? चूहे। तो आम प्रजा कैसी होवे? उल्लू। मैं फिर अर्ज करा, बगयाड़ कौन बन जाता है? असंतुष्ट। असंतुष्ट मनुख किसे नु खाएगा? किसी की जान खाएगा, किसी की इज्जत खाएगा, किसी की धन संपदा खाएगा। और असंतुष्ट मनुख दे कोल जे किधरे ताकत आ जाए उते लाशां बिछा देगा। 1 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर। चंगेज खान जिथों लंघदा सी बस्तियां उजाड़ के लंघदा सी। हलाकू खान दे घोड़े लाशां तो लंघदे सन। कहिंदे ने कमजोर बंदा अपनी वासना की पूर्ति लई रब नू मनदा है, गुरु नू मनदा है, परमात्मा नू मनदा है, क्योंकि जिहड़ी उसकी कामना है वह गुरु तो बिना पूरी हो नहीं सकती। कमजोर बंदा अपनी कामना की पूर्ति लई परमात्मा नू मनदा है, गुरु नू मनदा है। ताकतवर बंदा अपनी कामना की पूर्ति लई परमात्मा नू इनकार कर देंदा, एक पासे रख देंदा है। गल दोहां दी कामना दी है, धर्म दी नहीं है। ताकतवर बंदा अगर सामने रब नू रखे परमात्मा नू, क्या 1 करोड़ बंदियां नू कतल कर सकता है? क्या सड़कां ते हजारां लाशां बिछा सकता है? कहिंदे ने ताकतवर बंदे नू परमात्मा नू एक पासे करना पैंदा है, उहदी कामना पूरी नहीं हो सकदी अगर रब नू अगे करे, क्योंकि रब ते दया है, परमात्मा ते प्रेम है, परमात्मा ते निर्वैर है, परमात्मा ते निर्भय है, परमात्मा ते साबर है, परमात्मा ते समान दृष्ट है, परमात्मा ते विशाल है। अगर ये परमात्मा नू अगे करे तो क्या करोड़ां लाशां बिछा सकदा है? क्या घरां नू उजाड़ सकेगा? क्या किसी की असमत इज्जत आबरू धन संपदा जान खो सकेगा? कहिंदे ने ताकतवर मनुख हमेशा अपनी वासना की पूर्ति लई परमात्मा नू इनकार कर देंदा है, एक पासे कर देंदा है, क्योंकि उन्हू सामने रखे ते अपनी वासना की पूर्ति हो नहीं सकती। कमजोर बंदा अपनी वासना की पूर्ति लई परमात्मा नू अगे करदा, उहदे कोल कोई सहारा ही नहीं और कोई आसरा ही नहीं। ये परमात्मा तू ही मेरी टेक है, तू मेरी कामना की पूर्ति कर। वह भी कामना करके रब नू मनदा है ते ताकतवर भी कामना करके इनकार करदा है। सियाणे इस नू समझणगे, पकड़न के मूल गल कामना दी है, रब दी नहीं है। जिन्हों असी धार्मिक दुनिया कहने हाँ वह भी धार्मिक दुनिया नहीं है। यह भी मैरिज कर दें, अधार्मिक दुनिया ते अधार्मिक है, धार्मिक दुनिया भी अधार्मिक। एक बड़ी कीमती पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी, और मैं समझदा इको एक वाहिद ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने जो ऐसा कह सकते ने, पाप पुन दोए एक समान, निज गुण पारस तजो गुण आन। पाप ते पाप है, पुन भी पाप है। हद हो गई, पुन भी पाप है तो क्यों करिए? की लोड़ है फिर? ये पंक्ति में थानू गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी सुना रहे हैं, पाप पुन दोए एक समान, निज गुण पारस तजो गुण आन। पहले लभना पेगा कि मनुख पाप क्यों करता है। पाप करता है लोभ वस होके, हंकार वस होके, अज्ञान वस होके, वासना वस होके मनुख पाप करता है। ते मनुख पुन करे हंकार वस होके, मनुख पुन करे लोभ वस होके, मनुख पुन करे वासना वस होके, और मनुख पुन करे होमे करके। तो सतगुरु की बाणी कहती है फिर पाप पुन दे फर्क की होया, दोवां दे थले बुनियाद ते इको ही है। अग्ञान करके पाप कीता, अग्ञान करके पुन पिया करता है। हंकार करके पाप कीते इसने, हंकार करके पुन पिया करता है। वासना करके इसने पाप कीते ने, ते वासना कामना करके पुन पिया करता है। फर्क की है, पाप पुन दोए एक समान। पापियां दे पाप ते पाप है गए ने, गुस्ताखी माफ पुनीत बंदियां दे पुन भी कोई पुन नहीं है। क्योंकि थले हंकार खड़ा है। तीरथ बरतर दान कर मन में धरे गुमान, नानक नेह फल जात ते जिम कुंचल इसनान। तो मैं इस करा असंतुष्ट मनुख कातल बन जाता है, दुराचारी बन जाता है, डकैत बन जाता है। संसार दे इतिहास दे ये भरे पैने इन्हों का जिक्र है। और संतुष्ट मनुख भगत बन जाता है, सूरबीर बन जाता है, दानी बन जाता है। जगत दे सारे का सारा इतिहास ये दो तरह के मनुखां दे आले दुआले घूमता है, खोण वाले देण वाले। सत्संग, गुरु की संगत, भजन कीर्तन, नाम अभ्यास, बाणी का पाठ मनुख नूं संतुष्ट करता है, भगत बना देता है, सूरबीर बना देता है, दानी बना देता है, संपन्न बना देता है, महान बना देता है, और उसके अंदर परम आनंद पैदा करता है। भगत एक खिड़ा होया फुल है, वो अपना स्वपन बनता है, अपने गुणा की महक महक जो है बनता है। इस तरह सत्संगी ये रब्बी दौलत सत्संग तो प्राप्त करता है। इतने ही बचने सुगत प्रवान करने, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन। असी नाम अभ्यास करदे आया, वाहेगुरु मंत्र का जाप करदे आ करदे आ, गुरु तो वह सौगात प्राप्त करी जिन्हों कहने संतुष्टि संतोख। और जैसे मन संतुष्ट होगा अंदर परम आनंद की वर्षा होगी, ते मन दे ते भार नहीं रहेगा, बोझ नहीं रहेगा। साहिब रहमत करन, बख्शिश करन, ये दैवी गुण सानू प्राप्त होवन। इतने ही बचन सिगत प्रवान करने, क्योंकि दासा ने वापस भी नोटिंगम जो है जाना, तो घंटा उत्थे हाजिरी भर के फिर थोड़े तक जो है पहुंचे हैं। इतनी सेवा प्रवान करने, इस वक्त तक आप बैठे रहो, सुनने का शौक मुख रखे तो थोड़े शौक तो सदके कुरबान साहब ये थोड़ा शौक बनाई रखे, प्यार जो है बनाई रखे। बार बार सारे का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। फुल चुक दी शमा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
3: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक,
2: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
5: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

श्री नामदेव जी महाराज के अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस ओही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवंदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवंदा है, कोई बौद्धिक तल ते जीवंदा है, कोई दिल दे तल ते जीवंदा है। जीवन दे ए दो ढंग ने। जो बौद्धिक तल ते जी रहा है, उस दे अंदर विचार प्रधान होवेगी। जो हिरदे दे तल ते जी रहा है, उत्थे भाव प्रधान होवेगा। पर जो ना बौद्धिक तल ते जी रहा है, ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है, वो मनुष्य ही नहीं है, वो पशु है। पशु इन्हां दोहां थल्लां तो थल्ले ही जीवंदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है? दरअसल विचार नाल वस्तु नु समझना है, हस्ती नु समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तो जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तो समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लेके आंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव दी आवश्यकता ज्यादा है, अधिक है। भाव प्रथम है, विचार बाद देच है। भाव करके एक मासूम बच्चा मां नाल संबंध जोड़दा है, पिता नाल संबंध जोड़दा है, भैणा नाल संबंध जोड़दा है, भरावां नाल संबंध जोड़दा है। अजे ते विचार दी दुनिया उत्थे आरंभ ही नहीं हुई, अजे ते भाव दी दुनिया। कहिंदे ने परमात्मा नूं समझण दे विच ही ज्ञानियां दा समा लंघ जांदा है, और फिर भी पूरा समझना उसनूं कठिन है। थोड़ा जिहा जो तू समझे उहनूं हुण अपनी जिंदगी विच प्रयोग विच लिया, तो हुण जज्बा पैदा कर, भाव पैदा कर, श्रद्धा पैदा कर, ते उस नाल जुड़। जितना भी तू विचारेगा, विचारां दी पहुंच उस प्रभु तक नहीं होवेगी। थोड़ी बहुत जो विचार दे राही तेनू झलक मिली है, तो हुण जुड़न दी कोशिश कर। पर विचारां दी दुनिया जो बहुत अगे लंघ जाए, महान दार्शनिक हो जाए, महान फिलोसफर हो जाए, तो फिर उस लई जज्बियां नूं पैदा करना बहुत कठिन हो जाता है। उर्दू दे अजीम शायर इकबाल दा ऐसा कहना है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ऐ बंदे अकल दी दुनिया तो अगे लंघ जा, जज्बियां दी दुनिया च पहुंच, वलवलियां दी दुनिया च पहुंच, भावना दी दुनिया च पहुंच। जे तू कोई रस लेना है, स्वाद लेना है, आनंद लेना है, हकीकत है अकल ते रस्ते दा दीवा है, अकल ते रस्ते दा चानना है। ते हुण दीवे दी ही कोई परिक्रमा करदा रह जाए, ते मंजिले मकसूद तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आम आख्या जांदा है, कई दफा अंधी श्रद्धा वाला भी भटकदा भटकदा पहुंच जांदा है, पर कई दफा विचारां दी परिक्रमा करन वाला विचारां दे विच ही फसा रह जांदा है, और ईश्वर तक पहुंचना उस लई औखा हो जांदा है। विचारक अपने विचारां विच ही कई दफा उलझ के जो है रह जांदा है। हजारों साल फिलोसफी की तना तनी रही, खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। आखिर कितना भी खपिए, कितना भी विचारीए, ता भी विचारदियां विचारदियां पता चलदा है कि जिथों असी शुरू होई सी उत्थे ही खड़े, एक कदम भी अगे नहीं वधे। विचार विचार के जद ऐसा पता चले कि ओ साडे विचारां च नहीं आउंदा, ओ साडे सोच मंडल दे च नहीं आउंदा, ओ साडे बौद्धिक पकड़ दे च नहीं आउंदा, बस उसे क्षण चाहिदा है कि मनुख जज्बियां नूं जन्म देवे, श्रद्धा नूं जन्म देवे, विश्वास नूं जन्म देवे, भावना नूं जन्म देवे। तो भगत नामदेव जी महाराज भाव प्रधान पुरुष ने, और आप दे अंदर जदों थोड़ा जिहा भी भाव कमजोर होंदा है, थोड़ा जिहा भी प्रेम पिछे हटदा है, तां आप तड़प के कहंदे ने, मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली,
पनिया बिन मीन तलफे त्यों राम नाम बिन बापरो नामा। मैं ते तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च इंज जैसे पानी तो बिना मछली तड़पदी है, जिन्हें गऊ मां तो बिना उसका बछड़ा ओ तड़पदा है, व्याकुल होंदा है, पुकारदा है और उच्ची धुन नाल आवाज मारदा है। हे प्रभु जद भी रंजक मात्र भी विछोड़ा होवे ते विछोड़ा की है जज्बियां दा कमजोर होना, भावनावां दा कमजोर होना, श्रद्धा दा छीण होना, प्रेम दा थोड़ा जिहा बुझना, बस उस दे नाल ही भगतां दे अंदर तड़पनी शुरू हो जांदी है। कारण कि प्रेम दी अधिकता, भावना दी अधिकता, श्रद्धा दी अधिकता आनंद नू जन्म देंदी है, रस नू जन्म देंदी है। श्रद्धा घटी, भावना घटी, प्रेम घटिया, रस घट जांदा है। और बिल्कुल प्रेम नहीं, बिल्कुल श्रद्धा नहीं, बिल्कुल भावना नहीं, तो देखिया गया बिल्कुल कथा कीर्तन विच रस नहीं रह जाता, बिल्कुल सत्संग विच रस नहीं रह जाता। रस्ते ता हुण बनेगा जे इस शब्द नाल, कथा नाल, कीर्तन नाल भावना जोड़ी है, श्रद्धा जोड़ी है, प्रेम जोड़ी है, तो फिर रस दी गंगा वग तुरदी है। और प्रेम मनुख नू तृप्ति दे जांदा है, श्रद्धा भावना वाला मनुख अठे पैर तृप्त रहिंदा है, शुकराने विच रहिंदा है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाय। बौद्धिक तल ते जीण वाला बंदा ओ अक्सर गिलियां विच जीवदा है, हे प्रभु मैं इतना कीता ते प्राप्त की होया। बौद्धिक तल ते जीवण वाला मनुख अक्सर व्यापारी हो जांदा है। तो दुनिया दे चोटी दे व्यापारी समझ लेने चाहिए ने कि बौद्धिक तल ते जी रहे ने, हिरदे दे तल ते नहीं। ते दुनिया भर दे चोटी दे संत भगत उना बारे कहना पाएगा कि हिरदे दे तल ते जी रहे ने। बुद्धि दा प्रयोग करदे ने पर जीवन दा केंद्र हिरदा है। व्यापारी आम दुनियादार बंदा बौद्धिक तल ते जीवदा है, विचारां दे तल ते जीवदा है, श्रद्धा दा ते एवें कदी कदी अपनी गर्ज दी पूर्ति लई इस्तेमाल करता है, वर्तों करता है। और इस तरीके नाल श्रद्धा भी अपवित्र हो जाती है, इस तरीके नाल वो प्रेम भी धुंधला ते मैला होता है। तो भगत नामदेव जी महाराज कहिंदे मैं ते इंज तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च, ते विछोड़ा उदो ही आता है जद प्रेम मध्यम पैंदा है, जद श्रद्धा छीन आउंदी है, जद किधरे भावना नू सट लगदी है, जद किधरे विश्वास कमजोर आउंदा है, उदों रस आनंद और सुकून भी एक पासे हो जाता है। तो तड़पना ते कुदरती गल है, शुरू होवेगी मोहे लागती ताला वेली बछरे बिन गाय अकेली। इस तरह भावपूर्वक जीवन बतीत करने वाले ने श्री नामदेव जी महाराज। सिर्फ आप दे अंदर भावना ही प्रधान नहीं बल्कि आप दे कोल विचार भी ने। ऐसा ना समझ लिया जाए कि भगत विचार बिल्कुल नहीं रखते, नहीं, उन्हां दे जीवन दा केंद्र ते श्रद्धा है, उन्हां दे वर्तन वाले वे विच विचार ने। वो वस्तु नू समझदे ने, विचार नाल जुड़दे ने, भावना नाल। परमात्मा दा थोड़ा बहुत बोध हासिल करके जैसे वो प्रभु नाल भाव करके जुड़दे ने, तो परमात्मा दी बहुत वड्डी सूझ भगतां दे कोल आउंदी है। भावें आम दार्शनिक फिलोसफर बहुत कुछ पढ़िया लिखिया होवे तां वी उतनी सूझ नहीं रखेगा जितनी के भगत कोल है। एक अनपढ़ भगत कोल भी जितना परमात्मा दा ज्ञान है उतना चोटी दे पढ़े लिखे कोल भी नहीं होवेगा, क्योंकि भगत ते जुड़े है, भगत ने ते रस माणे है, भगत नूं ते उसदी होंद दा पूर्ण तौर ते पता है क्योंकि वह जुड़िया होया है। ते फिलोसफर दार्शनिक विचार वह ते सिर्फ विचार कर रहा है, वह ते सिर्फ विचारां दे तल ते जी रहा है। इस वास्ते भगतां ने ऐसा आख्या भी है, भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज कहिंदे ने, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न तरसे, लोहा कंचन रिंड होए कैसे, जो पारस नह परसे। श्री कबीर जी महाराज का भी ऐसा कहना है, हर जस सुने न हर गुण गावे, बातन ही असमान गिरावे, ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रहिए। ए भगत
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ। ਔਰ ਜਦ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਗੀਤ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਝਰਨਾ ਵਗ ਤੁਰਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਗਾਥਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਮਾਂਜੀ ਹੋਈ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਬਗੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਠਾਕਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਹੈ ਉਸਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਕ ਹੈ ਤੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾਮ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਾਗਰ ਖੂਬ ਮਾਂਜੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਮਛਲੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਛ ਮੈਂਢਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਛ ਕਛੂਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮਰ ਗੀਤ ਦਾ ਝਰਨਾ ਇੰਜ ਫੁੱਟਿਆ। ਆ ਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ, ਠਾਕਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਪਰ 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਜਲ ਮੇ ਹੋਤੇ, ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੀਠਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਠਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਿੱਠਲ ਮੰਦਿਰ ਪੰਡਰਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੀਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਮਾਂਜੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ 42 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ, ਔਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗਣਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਜਲ ਦੇ ਚ ਨੇ, 21 ਲੱਖ ਥਲ ਜੰਤੂ ਨੇ ਔਰ 21 ਲੱਖ ਨਭ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 84 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਜਨਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਮਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਖਾਲੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫੁੱਟੀ ਹੈ ਗਾਲਬਨ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਇਤਨੀ ਉਜਵਲ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਲ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ
ਬਗੀਆ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭੌਂਰੇ ਤਿਤਲੀਆਂ। ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਇਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਭੌਂਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਕੇ ਹੇ ਠਾਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭੌਂਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਨੀਲੇ ਫੂਲ ਪਰੋਈ ਲੈ ਮਾਲਾ ਠਾਕਰ ਕੀ ਹੋ ਪੂਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਸ ਲਈ ਹੈ ਭੌਂਰੇ ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਹੂ ਬਹੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਉ, ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਉ, ਦੂਧ ਤਾ ਬਛਰੇ ਥਨੋ ਬਿਡਾਰਿਓ, ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਬਿਗਾਰਿਓ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਨ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭੌਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਊ ਚੋ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗਊ ਦਾ ਬਛੜਾ ਖੋਲਿਆ, ਬਛੜਾ ਥਣ ਚੁੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਛੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਬਛੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਊ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਮੈਂ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਆ ਨੀ ਲੈ ਦੂਧ ਰਿਧਾਈ ਲੈ ਖੀਰਨ, ਠਾਕਰ ਕੋ ਨੈਵੇਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਧ ਬਿਤਾਰਿਓ ਬਛਰੇ ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਹੇ ਬੀਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁੰਗ ਗਿਆ ਬਛੜਾ, ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਥਣਾਂ ਦੇ ਚ ਦੂਧ ਤਾਂ ਬਛਰੇ ਥਨੋ ਬਿਟਾਰਿਓ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਨੀ ਲੈ ਦੂਧ ਰਿਧਾਈ ਲੈ ਖੀਰਨ, ਠਾਕਰ ਕੋ ਨੈਵੇਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਧ ਬਿਟਾਰਿਓ ਬਛਰੇ ਬਿਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਛੜੇ ਨੇ ਪੀ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੋਗ ਲਵਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬਛੜਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਭੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਥਣਾਂ ਦੇ ਚ ਹੀ ਝੂਠਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਵਾਂ? ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਚ ਪਿਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਤਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਚ ਆਪ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮਰ ਧੁਨੀ ਇੰਜ ਉੱਠੀ, ਈ ਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੱਛੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ? ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਜਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਮੈਲਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਵੱਛ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ? ਤੂੰ ਜਲ ਜੰਤੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ?
इंज ब्रह्म ज्ञान दा पूर्ण बोध भगत नामदेव जी महाराज दे अंदरों पैदा होया। हे प्रभु जल देच तू मच्छी देच तू तू ते व्यापक है। इबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं थान थन अंतर प्रणवे नामा पूर रहो तू सर्वमही। श्री नामदेव जी महाराज अगां फुल्लां बारे ऐसा कहिंदे ने, हे प्रभु जद मैं सोचिया कि तेनू फुल्लां दी माला बना के पहनावा ते तू तितली होके शहद दी मक्खी होके भौरा होके आप ही पहले रस ले लेना है, तेनू की मैं माला पहनावा। जद मैं सोचिया तेनू दुध पिलावा पर तू बछड़ा होके आप ही पहले दुध पी लेना है, आप ही भोग ला लेना है। गऊ तू बछड़ा तू दुध तू तू ही तू है। इबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं थान थन अंतर प्रणवे नामा पूर रहो तू सर्वमही। इत्थों ऐसा भी पता चलता है कि श्री नामदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म दे उपासक ने, व्यापक ब्रह्म दे उपासक ने। आप दे ऐसे बोल भी ने, हिंदू पूजे देहुरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या ना देहुरा न मसीत। हिंदू लभदा है मूर्तियां दे प्रभु नो, मुसलमान लभदा है खानकाह दे चो, पर नामदेव जी महाराज कहंदे मैं ते जिधर देखदा तेरे तो बिना कुछ है ही नहीं, तू ही तो है। इसनो श्री नंदलाल जी महाराज ने इंज बयान कीता है, ब्राह्मण मुश्ताक के बुद्ध जाहिद फिदाए खानकाह हर को जा जामे मुहब्बत दीदा एम सरशारस्त। ब्राह्मण लभदा तेनू बुतां दे चों और मुस्लिम लभदा तेनू खानकाह दे चों, पर हर को जा जामे मुहब्बत मैनू ते हर थां ते तेरी मुहब्बत तेरा प्यार ही दिखाई देंदा है, चाहे वो मंदिर है चाहे वो मस्जिद है, हर पासे तू ही तो है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीद नामे सोई सेव्या ना देहुरा ना मसीद, तो फिर किथे है? जे मंदिर ते मस्जिद दे च नहीं तो फिर किथे है? तो नामदेव कहंदे सबे घट राम बोले राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे। मेरा राम घट घट दे च बोल रहे है और राम तो बिना कौन बोल सकता है? राम ही बोल रहा है पशुआं दे च, राम ही बोल रहा है पक्षियां दे च, राम ही बोल रहा है मनुखां दे च, राम ही बोल रहा है पवन दी शांशां दे च, राम ही बोल रहा है सागर दे गर्जन दे च, बदलां दे गर्जन दे च, और सागर दी गर्जन दे च ही नहीं प्रभु बोल रहा है कोयल दी कू दे च, बुलबुलां दे चहचहाण दे च। हे प्रभु तू ही ते बोल रहे हैं सबे घट राम बोले राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे। हे प्रभु तू ही बोल रहे हैं सब घट दे अंदर बोल रहे हैं। तो इस तरह जो व्यापक ब्रह्म है, इस तरह दा जो व्यापक परमात्मा है, श्री नामदेव जी महाराज उस दे पुजारी ने नामदेव जी महाराज की दृष्टि दे च प्रभु एक व्यापक सत्ता है। वो अखंड ज्योति है, खंडित नहीं है, टुकड़िया टुकड़िया दे च नहीं है, अखंड ज्योति है, व्यापक है। पर उस तक किवें पहुंची है ते उसनू किवें प्राप्त करिए, नामदेव दे ये आखरी बोल आप जी दे समक्ष भेंट करा। श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान, ज्यों जल मांझे माछलो मार्ग पेखणो न जाई, ज्यों आकाशे पंखी अलो खोज निरखो न जाई। उस प्रभु नू किवें तलाश करिए ते उस परमात्मा तक किवें पहुंचिए जो व्यापक है, किवें पहुंचिए? मार्ग की है आखिर रस्ता की है। तो नामदेव कहंदे ने जैसे जल विच मच्छी चलदी है ते रस्ता बनदा है, उंज बना बनाया कोई रस्ता नहीं है, बना बनाया कोई मार्ग नहीं है, चलदिया ही मार्ग बनदा है। आसमान दे बने बनाई कोई सड़क नहीं है, पंछी उड़दा है ते मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं उंज कोई रस्ता नहीं, बस उड़दिया ही रस्ता बनदा है। ते मच्छी दे चलदिया ही सागर दे मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं। मनुख जैसे जैसे राम दा रटन करना आरंभ कर देंदा है, राम दा मार्ग बनना भी शुरू हो जांदा है। गुरु गुरु दी
आराधना जैसे मनुख आरंभ कर देंदा है, गुरु गुरु दा नाम लेना जब शुरू कर देंदा है, तो गुरु दा मार्ग भी बनना नाल शुरू हो जाता है। बना बनाया मार्ग नहीं है, इत्थे जपदिया मार्ग बनेगा, इत्थे नाम उचारण करदिया ही मार्ग बनेगा। जमीन दे उत्ते सानू बनिया बनाईया सड़कां मिल सकदियां, चलना सानू पैंदा है, सड़क नहीं बनानी पैंदी। पर इत्थे अध्यात्मक मंडल दे उत्ते ऐसा है।

0: है ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा, गुरमुख खोज अलख है ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरमुख जिड़ा है ओ परमात्मा दी खोज इस तरह कर लेंदा है जिवें सागर विच मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदी है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदा है। बिना मार्ग दे उड़दियां ही मार्ग बनदा है, चलदियां ही मार्ग बनदा है। इस तरह गुरु का सिख जद जपदा है तो जपदियां ही जपदियां परमात्मा तक पहुंच जांदा है, ईश्वर तक पहुंच जांदा है, अकाल पुरख तक पहुंच जांदा है। हू बहो श्री नामदेव जी महाराज यही कुछ कह रहे ने, मार्ग बना बनाया नहीं है, राम राम जपदियां ही राम दा मार्ग बनेगा और राम दी लीनता नसीब होवेगी। राम नाम विच लीन, बिठल बिठल विच लीन, श्री नाम देव जी महाराज अपने गीतां दे राहीं जगत नूं बिठल विच लीन करदे रहे, राम विच लीन करदे रहे और भ्रमण करदिया करदिया अनेकां नूं आपने राम विच लीन कीता, बिठल विच लीन कीता और लीन करदिया करदिया एक दिन आप सिर्फ मानसिक तौर ते नहीं शरीरक तौर ते भी उस बिठल विच लीन हो गए, उस प्रभु विच लीन हो गए। और लीनता ऐसी हुई सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale Washington।
2: जे किसे कर न्याणा होवे कदी किसे क्या भी बधाई होवे तुहाडे कर कल भाणा वापर गया, तुहाडे कर न्याणा होया भाणा वापर गया, क्योंकि हुक्म ते भाणा लफ्ज असी दुखांत नूं जोड़िया है। गुरु ने पहलियां पौड़ियां च कहा नहीं हो सिखा, हुक्म शब्द बड़ा वड्डा है, ए सुख भी है ते इहदे विच दुख भी। फिर बेनती हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया, नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई, करे सो चंगा मन में बेनती करे। हुक्मी खोवन आकार हुक्म न कहा जाई, हुक्मी खोवन जी हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईए, एक ना हुक्मी बख्शी से हुक्मी सदा पवाईए। मेरी बेनती तो सारे पौड़ी नाल पढ़ी पर ध्यान दिया जे अर्थां वाल, हुक्म विच ही वडियाई है, हुक्म विच ही अपमान है, हुक्म विच ही मौत है, हुक्म विच ही जन्म है, हुक्म विच ही सुख है, हुक्म विच ही दुख है। पर इस हुक्म दी समझ तां पैंदी जदन बंदे दी ईगो मरेगी, क्योंकि ईगो नहीं समझ देंदी, ईगो कहिंदी मैं करन वाला। फिर पौड़ी पढ़ लिये हुक्मी खोवन आकार हुक्म न कहा जाई, हुक्मी खोवन जी हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईए, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाईए। हुक्म अंदर सब को बार हुक्म ना कोए, नानक हुक्म जे बुझे ता हौमे कहे ना कोए, ओ हौमे च नहीं कहिंदा। मैं फिर बेनती करांगा जी, इस गल नूं मैं ज्यादा जोर सिर्फ इस ते देना है कि करे चो सो चंगा मान दुई गणत लाखे, जो कर रहा बस उन स्वीकार कर ले। अक्सर असी जदो ये मैं हुण भाणा शब्द वरते है ते ये आनंद साहिब च रोज पढ़ने जी, जां तिस भाणा तां जम्मिया, भाणा वापरिया ते बंदे दा जन्म होया, परिवार भला पाया। एक असी घटना अक्सर सुनाने हैं भाई भिखारी जी दी, मैं साखी नहीं सिर मैं तीन गल्लां चो करनियां ने कि तस्लीम कर लेना भी जो हो रहा मैनू मन्नागा। अगे असी बाणी चो देखांगे, क्योंकि जो गुरु जी दी तां बाणी दे प्रमाण लई दे ने, मता कोई सोचे शायद अपने कोलो। हुण असी जदों महाराज जी दे सिख बारे पढ़ने आ भाई भिखारी बारे, ते जेड़ा सिख इहनू मिलन गया उहदा नाम दरअसल सी भाई गुरमुख। बच्चे दा विआह सी, आप सब नूं पता है भी जवान पुत्र दा विआह कर इन्ना खुशियां खेड़े, पर भाई भिखारी जी जेड़े ने उह तप्पड़ सींदे पए सन। ते जदों दूजे दिन व्यांदड़ मुंडा ही जिहदी बरात गई उही मर गया, ते वापस आए ते भाई भिखारी जी अज कल जिस बच्चे दे विआह विच इन्ने साजो समान घर कट्ठा करी बैठे सन, ते अज तप्पड़ विछा के उस बच्चे दी मंजी दे कोल बैठ के उह बंदगी कर लग पए। उत्थे उहनां नूं पुछया गया भी जे तुहानूं पता सी संस्कार तो बाद ते तुसी ए गल कल क्यों ना कीती, तुसी भेद क्यों ना खोलिया। वो कहन लगे सिक्खी विच जिस बंदे ने मुक्त होना तीन गल्लां चेते रखे, ये तीन लफज उत्थे भी ने, तां ते भो गुरमुख सुन लीजै। हे भाई गुरमुख मेरी गल सुन, भाणा मानन मन थिर कीजै।

सेवा च लेखे नहीं। सच्ची मुची बाणी कहती है सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। मारे ने क्या पर एक थां ते गुरबाणी ने क्या नहीं सतगुरु की सेवा भी गवाच जाती है। एक तो मत थोड़ी सेव गवाई है। दूजा शब्द महाराज जी ने वरत्या जेड़ा बंदा फिजिकल तौर ते दिन रात सेवा करता है ते 10 मिनट रोज निंदिया दे पावे फोन ते लावे पावे गल्लां च ला जाए जेड़ा निंदिया करदा उहदे 24 घंटे इंज उड़दे आ जिवें तीली ला के सच्ची गल है सुके रूह नूं कोई फूक दिंदा है। सेवा सफल है पर महाराज जी का शब्द कह पर निंदा मुक्ते नी छूटी नेफल पई सब सेवा। महाराज कहिंदे सेवा उह नूं पाएगी जे सब दे चरणा दी धूड़ बन जाए निर्माणता विच आ जाए। सेवा साथ इस भाव सी संतां की होए छार। अगला वचन दीना नाथ दयाल देव। दीन तो शब्द दीना गरीबा। नाथ दा अर्थ है स्वामी मालक। सीधे अर्थ करांगे दीना नाथ दा अर्थ है गरीबा दा जिदा कोई सहारा नहीं उना दा नाथ उना दा मालक। दयाल दयालु है। देव दा अर्थ है प्रकाश रूप है। दीना नाथ दयाल देव पतित उदाहरण खार। सच एवे ओ पापियां दा पार उतारा करन वाला है ओ पापियां दा उधार करदा है। इस तोक विच गुरदेव ने प्रभु दे गुण दसे गरीबां दा मालक है दयालु है प्रकाश रूप है ते पापियां दे उधार करता है। ते सतगुरु बचन करदे आ आद जुगादी रखदा। आद दा अर्थ है शुरू तो ते जुगादी दा अर्थ है जदो समा भी नहीं सी बनिया समय तो पहला भी पार ब्रह्म परमेश्वर रखदा आया है अपने भगतां नूं रखदा आया है अपने प्यारियां नूं जिन्हों असी रोज पढ़ने आ भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो धुर तू रखदा आया जां असी करने आ हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया। राम राजे हजूर ने फरमाया आद जुगादी रखदा कौन जी सच। चचे नूं औंकड़ लगी है एक वचन नाम नूं भी औंकड़ है। करतार वाहगुरु जी का नाम है कि वह जो सच है जेड़ा सच अपने नाम विच वरतदा है। देखो सत नाम भी आउंदा ते सच नाम भी आउंदा। ते एक दिन मैं इत्थे करो शायद सवेर दी कि शाम दी कथा च कहा सी जिदा नाम होवेगा ना उहदे च नामी वरतदा नाम विच नामी वरतदा नूं सुणियो साडे च नहीं। मेरा तुहाडा नाम है वजूद मुक जाना नाम फिर भी अजे बंदा कहिंदा है चलो रहिंदी दुनिया तक इहदा नाम रहेगा। ते मैं एक दिन कहा सी भी इह तां रहना भी किस सेंस विच रहेगा। मान लो बंदा आया नाम रखिया मर गया ते बाद च भावे जिन्ना मर्जी बच्चे कही जान नाम नूं पर जिहदा नाम सी ओही मर गया नामी नहीं हैगा। जिन्हों मरन कहा आया गया मोया नौ उहदा नाम मर गया पर इह जिहड़ा नामी है जिथे नाम वरतेगा उथे नामी हर हालत विच आएगा ही आएगा। मां अपने सेवक की आपे रख है आपे नाम जपावे जय जय काज कीर्त सेवक की तहा तहा उठता वे। इथे महाराज कहिंदे ने भाई ओ आद जुगाद तो रखदा आया जेड़ा सच है जेड़ा नाम विच वरदा है करतार। ते महाराज कहिंदे आ कीमत कोए ना जाने ओदी कीमत कोई नहीं जान सकता। कीमत दा अर्थ ओ तां अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारी है अमुल भंडार। ओदा अंत कि हर आप अमुल कहे मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे विटो रहे लोक विल लाए। पर आए तरीका दस दिता ऐसा सतगुर जे मिले तिस नूं सर सौंपिया विचों आप जाए। हजूर कहिंदे ने ओदी कोई कीमत नहीं जानदा ते किसे तरीके नाल ओदी कीमत दा मतलब ओदा मुल ही नहीं पाया जा सकता। परमात्मा अमोलक है जी ओदा कोई मुल नहीं। बाबा जी दा एक शब्द है इस श्री राग विच उस दे चार पदे ने ते चारां पदियां दे अखीर विच महाराज इको गल कहिंदे आ कि इह कर्म करके इह कर्म करके तेरी कीमत नहीं पै सकदी। बचन
ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗੁਫਾ ਨਾ ਦੇਖਾ ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਉ ਪੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਖੋ ਕੇਵਡ ਆਖਾਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨੀ ਜਾਣਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਜੀ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੋ ਨਾ ਹੀ ਤੋਲਣ ਹਾਰ ਕੀਮਤ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਵੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੋਲ ਹੀ ਨੀ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਵਸ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨ ਤਨ ਚ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਸੇਵਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੂਜੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵਿਸਾਰੀਏ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਜੇ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਜਨ ਕਿਵੇਂ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਚੱਕਿਆ ਸਵੀਕਾਰ

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे घर तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इन्हां सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: सा ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमरहु गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो तरंग
0: संतजना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहु
0: साथ संग अग्न सागर तरह
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के वचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप्त हो उदहार
0: आप त्रै लोक निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजय
0: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजय
1: रखे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिन कह साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मलाए
1: मिट गए बैर भय सबरीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सो प्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेवा
1: काल जंजाल विकार से रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्रभु की उस्तुत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सोहोत निधान
1: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
0: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊच पाए स्थान
0: लहर न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निद
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टिता
1: ये पल तिस जन कै मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: केहो निधान जपै मन कोए
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखाणी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोविंद भगत कै मन बिश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जाते मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवारै
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबते ऊचता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी
1: सबते ऊचता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
3: Ek Omkar Satgur Prasad.

जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दी आइए को रहना भरिए पाइए को रहना भरिए पाइए।

पौड़े बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की संतोखी जिन्हें सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया।

0: पर पर गड्डी लदिए पर पर भरिए साथ पर पर बेड़ी पाइए पर पर गड्डिए खात पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल होर हो में चखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या।

0: धुआ पूरा तपे का सत गिर धुआ हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर धुआ हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में ऐसा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी मलकिया
1: चारे वेद हो सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप भक्त करनी।

0: तरतराजू तोलिए निवे सुगोरा होए अपराधी तू ना निवे जो हंता मिर्गा है शीश नवाए क्या थी जाए जाड़ दे कुसुदे जाहे
1: पढ़ पुस्तक संदे।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आख पाए हुए प्राणा सतिये ये फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाय मनिये पत उपजे शाला ही ससूत दर के अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी फल के थुक पड़े निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी।

हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बेख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा सो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पहाड़ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई सुकाह टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाय दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय सतनाम।

0: गुडेल सिंह बाथौर डेयरी लेके आए ने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नियर साउथ सरी वाइट ट्रॉक क्लोज टू द बॉर्डर विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ होम एंड बिजनेस. इन्वेस्ट करो 8 acres अते 100,000 स्क्वायर फीट दी ग्रीन हाउस नर्सरी बिजनेस विच एंड बी योर ओन बॉस. तुहाडी अते तुहाडी फैमिली लई सुनहरा मौका जिवे विच नर्सरी दे नाल नाल फाइन बेडरूम हाउस टोटली रीमॉडल विद इनक्रॉन आउटडोर पूल रिटेल शॉप वेयर हाउस प्राइवेट स्पेस अते होर भी बहुत कुछ. आज ही संपर्क करो गुडेल सिंह बाथ नू एट 604-351-5111.
1: सुन दे जी.
2: हाँ जी
1: दसो जी की पकाइए.
2: अपने गवांड वाले छुट्टी के न जाइए. आलू जी दे वधिया बैंगन अनमोल ने गोभी उत्थे ताजी.

0: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਨੇਕ ਭਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਮਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੀਮ ਭੇਰੂ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਠੇਠ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਆਪ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਚੁੰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੰਡਿਤ ਬਣੇ। ਸਮਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਆਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਦਮਾਵਤੀ ਸੀ। ਸਮਸਤ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੀਤ ਤੇ ਸੰਗੀਤ। ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਦੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਤਮਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਲਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿੱਠਲ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਜੋ ਭਗਤੀ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਵਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਛੰਦ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਦੀ ਲੈਣ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਕਰ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਗਾਵੇ, ਲੀਲਾ ਚਲਿਤ ਵਖਾਣ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਖੜ ਇੱਕ ਨਾ ਆਵੜੋ ਬਨ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਕਰ ਆਵੇ, ਰੋਜ਼ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਦੀ ਤੱਟ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਦ ਕਾਫੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਟੇ, ਅੱਜ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਐਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਘਰ ਲੋਟੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਪਤੀਵਰਤਾ ਸੁਪਤਨੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ तो पति दे दुख विच पत्नी भी शामिल हुई। और यह हकीकत है जब कोई महान दार्शनिक महान कवि किसी उलझन विच फसदा है और उस तो किसी समस्या का समाधान नहीं आता या उसके दिमाग विचों गीत दिया लहरां नहीं निकल दिया तो जिहड़ियां उस वक्त पीड़ा ते तकलीफ दर्द उसके हिरदे विच पैदा होता है ये वो कभी ही जानता है ये वो ही दार्शनिक ही जानता है। तो काफी दुखी ते चिंतातर मन नाल रात नू सौं गए। आज जैसे सवेरे उठे ते आपने रोजमर्रा दे कर्म दे मुताबक ग्रंथ चुकया पर पत्नी ने आख्या नहीं तुसी पहले जाओ नदी तट ते इशनान करो। रोजमर्रा दे ब्राह्मण दे जड़े कर्म ने उन्हों निभाओ प्रभु भक्ति करो नितनेम करो फिर इस ग्रंथ नू लिखण दी कोशिश करो। ओ गैबी शक्ति रखण वाले परिपूर्ण परमात्मा आप बख्शिश करनगे आप रहमत करनगे। कहिंदे ने पत्नी दी ये गल मन चिंतातुर मन दे नाल श्री जयदेव नदी तट दी तरफ जा रहे ने सोचदे आया कि कोई लैन कोई पंक्ति दिमाग दे चों उभरे पर कुछ उभर भी दिखाई नहीं देंदी। आज हिरदा ऐसा अमावस दी रात बने आया है जिदे च कोई चमकदा होया मामूली जिया तारा भी नहीं स्यारा भी नहीं। कहिंदे ने इधर जयदेव रुखसत होए नदी तट दी तरफ भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने गुण निधान घर आए के भगत रूप लिख लेख बनावे। जयदेव दा ही कोई रूप धारण करके जयदेव दे घर आया ते गीत गोविंद दियां दो पंक्तियां लिख दित्तियां सुनहरी स्याही दे च लिखियां जबकि सारा ग्रंथ काली स्याही दे च लिखिया। लिखदे आया जद पद्मावती ने वेख लिया तां ओ भज्जी होई आई ते कहन लगी रस्ते च ही वापस आ गए इशनान नहीं कीता नितनेम नहीं कीता बंदगी नहीं कीती। तां जयदेव जो वास्तविक गुण निधान प्रभु आप सन कहन लगे पंक्ति फुर गई सी लिखण लई वापस आ गया। ग्रंथ संपूर्ण हो गया ग्रंथ मुकम्मल हो गया। गीत गोविंद संपूर्ण करके अलोप हो गई ए अगम्मी शक्ति पद्मावती भोजन बनाने दे चलेन। इतनी देर दे श्री जयदेव जी महाराज नदी तट तो इशनान करके वापस आए गोविंद गोविंद दी धुन गीत अलाप दे हैं। घर विच प्रवेश होंदे हैं की देखदे ने पत्नी भोजन छक रही है ते जयदेव कहंदे ने मैं ब्राह्मण होके कुछ दिन नित दे कर्म भुल गया सी पर तू भी भुल गई मैनू खिला के ही तू खांदी आउंदी सी अज की हो गई बहुत भुख लगी। कहन लगे नहीं तुसी ग्रंथ संपूर्ण कीता ना थानू बहुत खुशी हुई सी ते उस खुशी खुशी च मैं थानू भोजन छकाया है पर हुण खुशी इतनी प्रबल है कि थानू छकिया होया भोजन भी याद नहीं रहा। जयदेव सुन के दंग रह गया हैं मैं भोजन छकिया और गीत गोविंद संपूर्ण हो गया है। हां संपूर्ण हो गया है तुसी खुद ते कहे और वो दो लाइना तुसी सुनहरी स्याही दे नाल लिखिया ने मैं खुद वेखिया ने। भज्जे हुए जयदेव गए ग्रंथ नू खोलदे ने वाकई ग्रंथ संपूर्ण दो पंक्तियां सुनहरी स्याही नाल लिखिया गया ने अखर पर प्रतीत कर होए विस्माद ना अंग समावे। जैसे उस पंक्ति नू पढ़दे ने विस्माद घर दे चले गए अश्चर्यता ते रहस दे चलीन हो गए एकदम आप ते सुरूर तारी होया। अरदास कीती हे त्रिभुवन धनी हे परिपूर्ण परमात्मा तू मेरे दिमाग विच ही थोड़ी शक्ति पा देंदा कि मैं आप लिख लेंदा। ये खेचलां तुसी क्यों कीतियां? तां कहिंदे ने अलहाम होया, आकाश बाणी होई, अंतर आत्मा बोली, जय देव जान बुझ के असी तेरे दिमाग विच ये कमी पाई, खुद लिखियां ताकि तेनू किधरे अहंकार ना हो जाए कि इतने वड्डे ग्रंथ दी रचना मैं कीती है। इस दा करता मैं हां। ते जद भी किसे भगत नू इस प्रकार दा अहंकार हो जांदा है ते अपने आप नू करता मन लैंदा है, मेरे नालों उस दा संबंध टुट जांदा है। ते तू मैनू इतना प्यारा लगे है, मैं नहीं चाहता सी कि तेरे ते मेरे विच कोई वित होवे। बार बार धन्यवाद दे नाल भरे जय देव, अशकबार हो बार बार सजदे छोए, हे प्रभु लख लख तेरा शुक्र, आज पता चलिया जो मैं बोलदा वो तेरी शक्ति, जो मैं वेखदा वो तेरी शक्ति है, जो मैं चलदा ये भी तेरी शक्ति है, जो मैं करदा ये भी तेरी ताकत है, और जो मैं सोचदा हे प्रभु ये भी तेरी शक्ति है। वास्तविक मेरे रोम रोम विच तू ही कम कर रहे हैं, तू ही वसे हैं, तू ही रमे आया। श्री जयदेव जी महाराज दा ए गीत गोविंद नामक ग्रंथ भगतां दी दुनिया च बहुत ही प्रसिद्ध है, और इनू पढ़ पढ़ के भगत जन आनंद लेंदे ने। गीत गोविंद दे कुछ हिस्से बकायदा प्रकाशित हो चुके ने, और इन्हां गीतां विच भक्ति भाव ज्ञान वैराग सब कुछ दैवी गुण समोह दिते ने भगत श्री जयदेव जी महाराज ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच आप दा एक संस्कृत विच बड़ा ही सुना पदा उचारण कीता होया है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच गुजरी राग दे अंदर दर्ज है। इस पदे दियां अस्थाई पंक्तियां ये ने, केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग, हे मन केवल राम नाम दा रमण कर ते उस दे ही अमृत स्वरूप दा पान कर। राम कौन, राम कैसा है, किस राम दा अमृत पान करिए, किस राम दा चिंतन करिए, किस राम दे सुरत लीन करिए, तो उस राम दी याद तशरीह कर देने, उस राम दी आप व्याख्या कर देने। इस पदे विच परमाद पुरख मनोपिमं सत्यादे भाव रतन परमद भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन। परमाद जो परम आद है, अनादि है, जिसदा मूल नहीं लभ्या जा सकदा, और जो सब दा मूल है, जिदी बुनियाद दा कोई पता नहीं, जो सब दी बुनियाद है, जो सब दी जड़ है, जो सब दा आधार है, ऐसा जिड़ा ब्रह्म है वो अनादि है, परमाद पुरुख वो फिर पूरे होया है। पुरुख तो मुराद पुरी पुरी बसंता सा पुरखा, जो पुरियां पुरियां विच रमे आया है, व्यापक है, वो पुरुख है। परमाद पुरुख मनोपिमं, मनोपमा तो रहत है, दरअसल मन अपने अनुभव विच पूर्ण तौर ते परमात्मा नूं नहीं लिया सकदा। मन पूर्ण तौर ते जिसनूं सोच नहीं सकदा, मन जिसकी पूर्ण तौर ते कल्पना नहीं कर सकदा, ते जिसकी मन ही कल्पना नहीं कर सकदा, उनूं जबान नाल कथन करना ते बहुत औखा, उनूं अखां नाल ते वेखना बहुत औखा। क्यों? कि अखां जिथों तक वेखदियां ने उस तो भी अगे की कल्पना मन कर सकता है। जबान जिथे तक कथन करती है उथों तो भी अगे की कल्पना मन कर सकता है। कन जिथे तक सुन सकते ने उस तो भी ज्यादा कल्पना मन कर सकता है। कल्पना की प्रवास बड़ी बुलंद है, कल्पना बहुत दूर तक चली जाती है, पर श्री जयदेव जी महाराज कहते ने चाहे कल्पना की प्रवास कितनी उची क्यों ना हो, कितनी दूर की क्यों ना हो, कितनी गहरी क्यों ना हो, फिर भी परमात्मा मेरी कल्पना विच नहीं आउंदा, वो किसी दी कल्पना विच नहीं आउंदा। मन दी सोच तो परे, मन दी विचार तो परे, इस वास्ते आप कहंदे मनोपमं, मनो उपमा तो रहत है। परमाद पुरुख मनोपिमं सत आदि भाव रतन ओ सत चित आनंद आदिक भावा दे नाल रत आया। ओ सत है, ओ चित प्रकाशमयी है और ओ आनंद स्वरूप है। एक पंक्ति देख राम दी व्याख्या इंज कर देने, परमाद पुरुख मनोपिमं सत आदि भाव रतन परम अद्भुतन परम अद्भुत रूप है, परम आश्चर्य रूप है। मनुख उत्थे आश्चर्य हो जांदा हैरान हो जांदा है, विस्माद हो जांदा है। जिन्हू वेखे ते पूरा वेख ना सके, जिन्हू सोचे ते पूरा सोच ना सके और जिसनू चखे ते पूरा स्वाद ना मान सके, फिर भी वह बच रहे जिन्हू सुने ते फिर भी पूरा ना सुन सके, उत्थे विस्माद दा तारी होना कुदरती गल है। उत्थे आश्चर्यता ते रहस दा पैदा होना कुदरती गल है। कहिंदे ने एक बच्चा रहस विच जीवदा है, एक कवि रहस विच जीवदा है, एक संत रहस विच जीवदा है। अजोका समा चूंकि इस ढंग दा बतीत हो रहा है कि हर मनुख ऐसा कहिंदे मैं सब कुछ जानदा, चाहे कुछ भी नहीं जानदा, मैं ते सब कुछ वेख लिया, मैं ते सारा सुन लिया, मैं उसनु पूर्ण तौर ते सोच लिया। अगर ऐसा कोई दावा करे तो आश्चर्यता नहीं पैदा होती, रहस्य नहीं पैदा होता, विस्माद नहीं पैदा होता। इस तरह का दावा करने वाले अजोके समय च बहुत ज्यादा ने, क्योंकि अज के समय च जितने कॉलेज ने जितने विद्यालय ने ये पहले नहीं सी। अजोकी विद्या ने भावें कुछ दिता है या नहीं, लेकिन रहस्य नु खत्म जरूर किया है, विस्माद नु खत्म जरूर किया है। मनुख दी दुनिया विच जो एक विस्माद सी रहस्य सी वो खत्म हो गई, वो अज देखण नु नहीं मिलता। हां बच्चे कोल ए विस्माद है, अजे अबोध है, उसका विस्माद अबोध अवस्था ते खड़ा है, अचेत अवस्था ते खड़ा है। फिर कवि कोल विस्माद है, या इन कह लो कविता का जन्म ही विस्माद तो होंदा है, कविता का जन्म ही रहस्य तो होंदा है। तो कवि रहस्यवादी होंदे ने, संत रहस्यवादी होंदे ने, वो जो कुछ भी वेखदे ने वो ऐसा महसूस करदे ने कि एक रेत दे जर्रे नू भी पूर्ण तौर ते वेखना बड़ा औखा है, क्योंकि वह भी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठा है, बहुत कुछ छुपाई बैठा है। सूरज नू ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक जर्रे नू भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। एक दरखत नू ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक पत्ते नू भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। उहदे विच भी बहुत कुछ छुपया होया है, बहुत कुछ गुप्त है, बहुत कुछ सूक्ष्म है। तो जैसे ये बोध होंदा है कि बहुत कुछ सूक्ष्म छुपया होया है जो मैं नहीं देख सकता, बहुत कुछ अदृश्य है, तो रहस्य पैदा हो जाता है। फिर विस्माद मंडल तारी हो जाता है, तो कवि विस्माद विच जीवदे ने, संत विस्माद विच जीवदे ने, भगत जयदेव जी महाराज कहते ने परम अद्भुतन ओ परिपूर्ण परमात्मा परम आश्चर्य रूप है। परकृत परम ओ प्रकृति तो परे है। कहते ने रविंद्र नाथ टैगोर सागर तो इशनान करके वापस आ रहे ने, रस्ते विच एक गंदगी का ढेर पिया, सवेर का वक्त है, सूरज दियां किरणा उस गंदगी दे ढेर नू छू रही ने। इस सारा दृश्य वेख के रविंद्र नाथ टैगोर नच उठे, कहन लगे हे प्रभु तेरी आश्चर्यता जो मेरे ते अज प्रगट हुई है वो ये कि मैं तेरी निर्लेपता दा ज्ञान हासिल कर ले। सूरज दियां किरणा गंदगी नू छू रही ने, फिर भी किरणा गंदियां नहीं हो रही, फिर भी सूरज गंदा नहीं हो रहा। तू मेरे गंदे शरीर दे रोम रोम विच बैठा है, फिर भी तू गंदा नहीं है, तू निर्लेप है, प्रकृति तो परे है, सब कुछ ते विच है, सब कुछ ते दूर है, सबके मत सबू ते बाहर सारिया दे तू है, पर फिर भी सारिया तो बाहर है, निर्लेप है। तो श्री जयदेव जी महाराज कहते ने परम अद्भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन, जिसका चिंतन करने दे नाल सर्व प्रकार दियां गतियां प्राप्त हो जांदियां। हर पासे दी गति मनुख कर लैंदा है, भाव हर पासे मनुख दी पहुंच हो जांदी है, सब कुछ मनुख प्राप्त कर लैंदा है। इस वास्ते ऐसा जो परमात्मा है, प्रमाद पुरुख मनोपिमंग सत्याद भाव रतन परमद भुतन परकृत परन जत चिंत सर्वगतन केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयन। ऐसा जो अमृतमयी राम है, परमात्मा दा नाम है, उसनु तू पान कर, उसने ही अमृत स्वरूप दा जो है तू आनंद मान। अगां चल के इसे ही पद विच श्री जयदेव जी महाराज कहंदे ने कि नदनोद जस सिमरणे ना जन्म जराद मरण भयं। नहीं आउंदा जिहदे सिमरन करन दे नाल जन्म दा दुख, मरण दा दुख ते बुढ़ेपे दा दुख। साडे देश दे ऋषि मुनिया ने ये तीन दुख बड़े प्रबल मने ने, जन्म दा दुख, मरण दा दुख ते बृद्ध अवस्था दा दुख। भगत कबीर भी इसनु मनदे ने, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल बही नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी। बुढ़े कुल तन ते है पर कुछ कर नहीं सकता, दिमाग है पूर्ण तौर पे सोच नहीं सकता, हाथ पैर हैगे ने पूर्ण तौर पे कुछ कर नहीं सकते, चल नहीं सकते। इस वास्ते वृद्ध अवस्था नु, पूर्ण वृद्ध अवस्था नु रोगमयी अवस्था करके आख्या। तो श्री जयदेव जी महाराज कहने जेदा सिमरन करन दे नाल नहीं आउंदा जन्म दा दुख, मरण दा दुख, क्योंकि मुड़ के जमना नहीं तो फिर मरना ही नहीं, ते नहीं आउंदा बुढ़ेपे दा दुख। साहिबगुरु अर्जुन देव जी महाराज भी फरमान करदे ने, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, हरी दा जो जन है ओदे नेड़े ए जन्म मरण ते बुढ़ेपा जरा नहीं आउंदा। इत्थे एक तरक खड़ी होवेगी, चलो जन्म मरण तो भगत बच जांदा है, पर बुढ़ेपे दे रोग तो किस तरह बचता है। एक पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे, गुरमुख कदे बुढ़े नाई जिन अंतर सुरत ज्ञान। जिद्दी सुरत प्रभु नाल जुड़ी हुई है, जिथे आत्म ज्ञान मौजूद है, ऐसा बंदा चाहे शरीरक तल ते वृद्ध भी हो जाए पर ओदियां उमंगा हुलास देच कोई फर्क नहीं पैंदा, ओदी चेते शक्ति देच कोई फर्क नहीं पैंदा, उसदे चेहरे दे ताजगी बनी रहिंदी है, उसके चेहरे दे आनंद बनिया रहिंदा है। उनू वेख के कोई ऐसा नहीं कह सकता कि बुढ़ा हो गया है, वृद्ध हो गया है, ये कमजोर हो गया है, नहीं, उसका हुलास, उसकी उमंग, उसकी तुरंग और उसकी चेते शक्ति पूर्ण तौर पर कम कर दिए, प्रभु की बंदगी का एक महान फल है। इस वास्ते आत्मदर्शी पुरुषा ने कहा है कि नाम सिमरन करने वाले दे कोल बुढ़ेपे का रोग भी नहीं आता। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने। श्री जयदेव जी महाराज इस पावन पवित्र पदे देच फरमान करदे ने, ना दनोद जस समरेन ना जन्म जराद मरण भयं, इच्छस जमाद पराभयं जस्वस सुकृत कृतन। जे तेनु इच्छा है ए बंदे कि तू जमा दा तिस्कार करें, जन्म मरण तो बचे, ता जस सुकृत उस परिपूर्ण परमात्मा दा जस गायन कर, जसवस सुकृत कृतन, शुभ कर्म कर ते परिपूर्ण परमात्मा दा जस गायन कर। भाव परमात्मा दा जो जस है यही सुकृत है, यही पूर्ण तौर ते शुभ कर्म है, इसनु तू करन। इसे एक शुभ कर्म तो अनेका शुभ कर्म जन्म लेंदे ने, अगर ये एक शुभ कर्म नहीं तो फिर कुछ भी शुभ नहीं है। शुभ कर्म ओ है जद हिरदा शुभ दे नाल जुड़दा है, तो शुभ परमात्मा है, शुभ ईश्वर है। जब शुभ दा चिंतन किया जाता है तो हिरदा शुभ हो जाता है, ते जैसे हिरदा शुभ होता है ऐसे ही मनुख शुभ चिंतक बन जाता है, वो हर एक दी शुभ कामना करता है, वो हर एक दा शुभ चिंतक बनता है। पर शुभ होए बिना शुभ चिंतक होना बहुत कठिन है, शुभ होए बिना शुभ कामना करनी बहुत औखी है, कामना मैलियां होनगियां और चिंतक चिंतन जो है माड़ा ही जो है चलेगा। तो परिपूर्ण परमात्मा का कल्याणकारी नाम, उसका जो शुभ कर्म है, उसका चिंतन ओ तो कर। इच्छस जमाद प्राभयं जस्वस सुकृत कृतं। भव भूत भाव समव्यन प्रसन्न परमन प्रसन्न मिदन श्री जयदेव जी महाराज कहते हैं, जो त्रैकालदर्शी है और एक सार परिपूर्ण जो रमे आया है, व्यापक है, भवभूत भाव समव्यंग, जो हुण भी है, पहले भी सी, अगामी जो है होवेगा, जो हर समय मौजूद है, त्रैकालदर्शी है, भवभूत भाव समव्यंग परमन प्रसन्न मिदन, जो अत्यंत प्रसन्न चित्त है, जो अत्यंत परम आनंद विचलीन है, तो उसका ही कल्याणकारी जस उच्चारण कर, यही शुभ कर्म है, यही शुभ चिंतन है। अगां चल के श्री जयदेव जी महाराज फरमान कर देने, हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा, हरीदा भगत मन बाणी शरीर करके प्रभु नाल जुड़े हुए है। ऐसा जो हरीदा भगत है, हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा, जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा, ऐसा जो भगत है, जो मन करके शरीर करके बाणी करके प्रभु विचलीन है, ओदे सामने जग तुच्छ है, जोग साधना भी तुच्छ है, और ऐसे भगत दे सामने दान भी कोई मायने नहीं रखता। भाव दानी तो भी ओ भगत उच्चा है, जोगी तो भी ऐसा भगत उच्चा है, और जग करन वालियां तो भी ऐसा भगत उच्चा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी मन दिए कि इना सारे कर्म कांडा तो भगत दी जिंदगी उच्ची है, जोग जग नै फल तुम मानो जो प्रभ जस बिरसरावे। जिथे भगत पहुंचे है उथे जोग जग दी पहुंच नहीं है, दान दी पहुंच नहीं है, इस सब कुछ तो उच्चा जीवदा है भगत। हर भगत निज नह केवला रिद कर्मणा बचसा, जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। इस पदे दे अखीर विच आप कहंदे ने, गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदन, जय देव आयो तस्सु फटंग भवभूत सर्वगतंग। गोविंद गोविंदा ऐ मनुख जाप कर, और इस तरह जाप कर दें तेनु सारी गतियां दी प्राप्ति होवेगी, तेनु सब कुछ दी प्राप्ति होवेगी। गोविंद दे चिंतन विच ही संसार दे सुख ने, परमार्थ दे सुख ने, गोविंद दे सिमरन विच ही लोक सवर जांदा है, परलोक सुहेला हो जांदा है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: सुन दे जी।
3: हाँ जी।
2: दसो जी की पकाइए?
3: अपने गवांड वाले फुटी के न जाइए।

0: तेजे सब्जी भले खाना है, रोटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604581190।

0: द्वापर जवान हो गया मनुख, हुण इसनूं उठण बैठना सिखाण दी लोड़ नहीं है, हुण इसनूं बोलण दी तमीज सिखाण दी लोड़ नहीं है, जवान हो गए। अगर जवान बच्चे नूं भी कहना पए तो इंज बैठ, इंज चल, इंज बोल, तो शायद अजे वो जवान नहीं होया। जवान इन्हां जिम्मेवारियां नूं समझदा है, बालग हो गया है। बालग होया है उस जमाने आए श्री कृष्ण और कृष्ण जी नूं कहिंदन लीला परशोत्तम श्री कृष्ण। जवान उम्र वाकई एक लीला है, एक लीला है, एक रास लीला है। जीवन विच शक्ति बड़ी है, ताकत बड़ी है, उछाल बड़ा है, होन विच उबाल बड़ा है। द्वापर रथ तपे का सत अगे रथवा, ये उछलिया होया होन, ये उछली हुई शक्ति अनर्थ नु जन्म ना देवे। तो हुण कुदरती गल्ले उच्चा आचरण सिखाना ही सी। सत अगे रथवा, जब जीवन दा लक्ष होवे उच्चा इखलाक, ते प्राप्ति दा साधन बन जाए तप द्वापर। ये विचारधारा देना है श्री कृष्ण। मर्यादा जबरन थोपे नहीं जा सकती। कृष्ण दा संदेश मनुख जी सके ढंग नाल, मर्यादा सहायक होवे, मर्यादा मारू ना होवे। जिथे जिथे मर्यादा करके मनुखता मरे, मनुख मरे, उथे उथे मर्यादा नु एक पासे कर दिता जाए, मनुख नु मारन दी लोड़ नहीं। जैसे देखदे हां मर्यादा दी पालना करदे आया श्री राम ने गर्भवती सीता नु अपने घरों कढ दिता, मर्यादा दी पालना करदे आया शंभूक नाम दे जीवर दे कन्ना विच शीशा पिघला के पा दिता, क्योंकि वेद मंत्र सुनना शूदर लई गुनाह सी। मर्यादा बन चुकी सी, बहु गिणती विच अगर प्रजा कुछ कहेगी तो राजे नूं मनना ही पएगा। तो सीता नूं घरों कढ़ना पया, जदके निर्दोष है, पवित्र है, सतवादी है, निर्दोष नूं भी मर्यादा सजा दे देवे, इह श्री कृष्ण नूं काबले कबूल नहीं सी। जीवन नूं लीला दी तरह लो, मर्यादा बोझ ना बने, सिर दा भार ना बने कि सिर नूं दबा के रख दे। तो इस तरह ये द्वापर युग एक जवान युग। कॉलेज दे प्रोफेसर आए श्री कृष्ण, किसे विशेष यूनिफॉर्म दी लोड़ नहीं और वर्दी दी लोड़ नहीं, किसे खास मर्यादा दी लोड़ नहीं। जीवन एक लीला है, जीवन एक तमाशा है, और लीला दी तरह जीवो, पर लीला भ्रष्ट ना कर देवे। जीवन दा लक्ष्य उच्चा इखलाक बनाओ, उच्चा आचरण बनाओ, पर जीवन नू फिर भी रास लीला दी तरह लेना। कल युग एक बुढ़ा युग, बिरध अवस्था। बुढ़े तोते नू पड़ाण लई आए धन गुरु नानक। मर्यादा सिर दा बोझ होवे तलांजली दे दो, पर लीला भ्रष्ट कर देवे। और वाकई लीला ने भ्रष्ट कर दिता। अगां चल के मंदिर देवदासियां दे अखाड़े बन गए। मंदिर दे मांस ते शराब आम चलन लग पिया, और जो थोड़े रूप च अजे भी मौजूद है, काली दा मंदिर, कुमुखिया देवी दा मंदिर, उजैन दे भैरव काल दा मंदिर, उजैन दे भैरव काल दे मंदिर दे अज भी शराब दा प्रसाद है और शराब चढ़ाई जाती है। ਕੁਮੁਖਿਆ ਦੇਵੀ ਗੁਹਾਟੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਕਾਲੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ, ਦਿਨ ਭਰ ਮਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੰਡੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਮੰਦਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੈਸ਼ਿਆਲੇ ਬਣ ਗਏ ਮੰਦਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਮੰਦਰ। ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਕਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਮ ਇਬਾਦਤ ਔਰ ਉੱਚੇ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਸਨ ਸਭ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਸੋਹਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਜਦ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹਮਲਾ ਆਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਜਾਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਹੈ ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ, ਆਪਨੇ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੀਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਗ ਆਏ, ਸੰਗੀਤ ਆਏ ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਦਾਰਥ ਆਏ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ। ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਆਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਗ ਦੀ ਧੁਨ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਔਰ ਰਸ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਚਲੇ ਜਗਤ ਦੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਆਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੁੱਖ ਵੰਡਦੀ ਹੋਈ, ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਕਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਚਲੇ ਔਰ ਉਹ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਦਇਆ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਭੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੋਤ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦਇਆ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭਕਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨ ਬੇਖ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਮੰਨਣ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਇਸ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਜੈਸੇ ਬੁੱਢਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ झूठ बोलना भी आ जांदा है और झूठ उसका चलदा भी है। उम्र का तकाजा देख के बुजुर्ग है उसकी हर गल नू अगले सही मलने देने बुढ़ापे करके जबकि सही नहीं आती। तो यह एक प्रभाव है इस बुढ़े युग का, झूठ से व्यापक है, तृष्णा से व्यापक है। एक गर्भकाल के बच्चे की तृष्णा होगी, एक खिडौणिया नाल खेड़ बच्चे के अंदर की तृष्णा होगी। हां जवान के अंदर हो सकती है और बुढ़े के अंदर कई गुणा ज्यादा हो सकती है। यह तृष्णालु युग, यह झूठा युग और यह बहुत स्याणा युग, इसनों गुरु नानक ने आख्या तो सिख है सिखना है अजय तो कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि बुढ़े नू सब तो वड्डा माण यह आंदा है मैं सब कुछ जानता, इस जवान नू की पता है, इस बच्चे नू की पता है। वाकई एक बिरद के सामने जवान ते बच्चा अनजान ने, पर वाकई भगवान के सामने एक बुढ़ा भी अनजान है, सच दे सामने एक बुढ़ा भी अनजान है। लिहाजा एहसास कराया तू सिख है, तेरे अंदर ये भाव पैदा होवे मैं कुछ नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं पता। इस भाव तो शिक्षा दीक्षा आरंभ की थी गुरु नानक ने, पर शिक्षा दीक्षा बोझ ना बने गा के शिक्षा दिती। रबाब दी धुन नाल अपने दिल दियां तरबां मिलाईयां, रब्बी संगीत नू जन्म दिता और आपने इस ढंग नाल समझाना शुरू कीता। आलम कहिंदे ने गुरु नानक ने योग साधना नहीं की थी, गुरु नानक ने जल धारा नहीं की थी, गुरु नानक ने प्राणायाम नहीं कीते, गुरु नानक ने धोने नहीं तपाए, गुरु नानक ने वर्त नहीं रखे, गुरु नानक दा तीर्थां दे रटन दे कोई विश्वास नहीं, गुरु नानक ने केवल प्रभु दा गीत गाया है गाउण दे च विश्वास है, पर इतनी एकाग्रता नाल गाया, इतने रस विभोर होके गाया, इतने प्राणा नाल गाया कि गाउणा ही जप बन गया, गाउणा ही तप बन गया, गावना ही जोग बन गया, गावना ही प्रभु दा रोग बन गया, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। कीर्तन गुरु घर दे प्रभु प्राप्ति दा मुख वसीला बन गया, सिर ते बोझ ना बने प्रभु दा दर्श गावदे आया प्राप्त करिए। अगर परमात्मा आनंद है ते उस दे दर तक पहुंचन दा वसीला भी रस होवे, आनंद होवे, खेड़ा होवे, खुशी होवे, तो इस तरह रबाब दी धुन ते वक्त दा राग वक्त दी रागनी गा गा के आप जगत नू शिक्षा देंदे रहे, दीक्षा देंदे रहे और आपने मनुख की दुनिया चो जात पात नू एक पासे कर दिता, वर्ण वंड नू भी एक पासे कर दिता। मनुख केवल मनुख है, जन्म तो कोई धार्मिक नहीं, जीवन तो धार्मिक होवेगा, जन्म तो कोई ब्राह्मण नहीं, हां जीवन तो ब्राह्मण हो सकता है, जन्म तो किसी नो शूदर ना आखो कोई शूदर नहीं, जीवन तो शूदर हो सकता है। और इस तरीके की शिक्षा दीक्षा मनुख की झोली दे पाई, जात पात दे सारे वितकरे हटा दिते और आखिया सिर्फ जोत नाल जुड़ो जात नाल नहीं, एक पासे रखो जात नो जोत नाल जुड़ो। शरीर सारियां दे अलग अलग ने, असी देखते हैं एक शरीर दा मास दूजे शरीर दे फिट करना बड़ा औखा है, क्योंकि हर शरीर अलग अलग है। मन भी अलग अलग ने, किधरे किधरे कोई दो मन एक हो जाते ने, दो मनुखां दी विचारधारा किधरे एक हो जाती है, सारे संसार दी विचारधारा भी एक नहीं हो सकती। हर एक दा तन अलग अलग है, हर एक दा मन अलग अलग है, पर सारियां दी आत्मा तो एको ही है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने हर एक दे अंदर आत्मा वेखो वो एक है, आपका संदेश ते उपदेश भी एक है, सारे ही एक ने, सारे ही एक दे विच ने, सारियां दा मालिक एक है। तो जात अलग अलग नहीं हो सकती, मजहब अलग अलग नहीं हो सकते, सारियां दा वर्ण धर्म वेख एको ही है और वो परमात्मा दा स्वरूप, परमात्मा दा स्वरूप जैसा सानू मिले है उस रूप अपने आप नू जो है रखो और अपने अंदर ये भाव रखो कि सीखना है, मैं अजे भी सीखना है, मरदे दम तक सीखना है। अगर ऐसा भाव अंदर बनया रहे तो मरदे दम तक उसकी पात्रता बननी रहती है और परमात्मा दियां बख्शिशां उन्हों मरदे दम तक प्राप्त होंदियां रहिंदियां ने। चार युगां दी विचारधारा गुरबाणी नमुख रख के तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे समक्ष भेंट कीती है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: समय दीवन। इस शब्द आशा दीवार देख लिया, श्लोक दे रूप देख सत्संगिया कंठ है।
1: नानक मेरे शरीर का एक रथ वाओ।
0: मेरु जैसा ये शरीर, मेरु सुमेर पर्वत तो शब्द लिया गया है। सुमेर पर्वत माला दे सब तो उच्चा मणका हुंदा है, मेरु मणका। सारे शरीरां दे चा शरीर मनुख दा मेरु शरीर है, सुमेर पर्वत है। माड़ी मोटी पहाड़ी नहीं, सुमेर पर्वत है। ये महान शरीर है। महाराज कहते ने ये जो महान शरीर है, ये जो मेरु मणका है, ये जो सुमेर पर्वत है, इसते जीवन दे साधन, इदी तर्जे जिंदगी समय समय नाल बदल दी रही है और विचारां दे आसरे ते बदल दी रही है। युगां दी तब्दीली खड़ी मनुख ते ही है। बाहर दी किसे चीज देते युगां दी तब्दीली खड़ी नहीं। रामकली राग देच धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर देने, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन यर तप्त रहे, सा धरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले थां कैसे, ओही चंद्रमा ओही तारे ने, ओही गंगा है, ओही सागर है, ओही धरती है। और हजारां साल पहले भी पंज तत्तां दे मनुख होंदे सन, अज भी पंज तत्तां दे ने। ब्रह्मंड दे पंज तत्त ही व्यापक सन, अज भी पंज तत्त ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज प्रमाण करदे ने, पंज तत्त कर तुद सब सिष्ठ साजी, कोई छेवां करेओ जे किछ कीता होवे। तो सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन यर तप्त रहे, सा धरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले थाओ कैसे। आखिर सब कुछ ओही है, फिर इसनु कलयुग क्यों कहंदे ने? विचार बदल गया, जीवन शैली बदल गई। आग गुणा कल आइए, महाराज कहने में कहने लगा कलयुग आया है, कलयुग आया है। किवें पहचान करिए, जे को सत करे सो छीजे, तप घर तप ना होई, जे को नाम ले बदनामी, कल के लक्षण एही एही कलयुग दे लक्षण ने। कि कोई उच्चा इखलाक धारण करन दा प्रण करे, मैं सच बोलना है और सतवादी जीवन बतीत करना है, छिज जाएगा। संसार विच बहु गिणती दे चल रहा झूठ इसनु सतवादी नहीं रहन देगा। तप घर तप ना होई, तपीश्वर दा तप नहीं हो सकेगा, भ्रष्ट हो जाएगा। जे को नाव ले बदनावी, कल के लखन एही, जो नाम जपेगा बंदगी करेगा उनु मूर्ख आख्या जाएगा, भोला आख्या जाएगा, पछड़िया होया आख्या जाएगा, धर्मांध आख्या जाएगा। ए कल युग दे लक्षण नहीं। महाराज कहने जिस सिकदारी किसे खुआरी, चाकर के है डरना, जा सिकदारे पवे जंजीरी, ता चाकर हथों मरना। कलयुग दी होर रूपरेखा बयान करदे होया महाराज कहने

0: किसे पख दा भी जो चौधरी है ख्वार होवेगा। कोई भी जिम्मेवारी चुके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जरीलो ख्वार होवेगा। और उसनु अक्सर चाकरा तो डर के रहना पेगा, पर जा तो डरदे हुए राजे जीण गए। जा सिख दारे पवे जंजीरी ता चाकर हथों मरना, जे किधरे चौधरी बंदना दे पै जाए तो अक्सर मुलाजम दे हथों चाकर दे हथों नौकर दे हथों ही उसकी मौत होवेगी, सेवक दे हथों मालिक दी मौत होवेगी। ये तो सब कुछ असी देखते पाया, घर दे नौकर ही घर दे मालिक नू मार जांदे ने, घर दे नौकर ही घर नू लुट लेंदे ने। और अक्सर मालिक नौकरा तो डर डर के अपना जीवन बतीत करते ने, पर जा तो डरे हुए ने हुक्मरान, तो जो परे जा तो डरे होया हुक्मरान है वो तो फिर प्रजा दे मुताबिक ही चलेगा। अगर प्रजा भ्रष्ट है राजा भ्रष्ट हो जाएगा, राजा भ्रष्ट है प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसी बैरूनी रंगत जो कलयुग दी है, धन गुरु नानक देव जी महाराज बयान करते हैं और कहन तपीश्वर तप नहीं कर सकेगा, जपीश्वर जप नहीं कर सकेगा। उच्चा आचरण धारने जिसने प्रण कीता है अपने प्रण नो निभा नहीं सकेगा। जेको सत करे सो चीजे, तप घर तप ना होई, जेको नाव लए बदनामी, कल के लखण ए कल जुग दे लक्षण ने। इते होई बैरोनी रूप दे कल जुग दी द्वापुर त्रेते ते सत जुग दी व्याख्या। इसनु जो अध्यात्मक रंगत गुरु नानक देव जी महाराज ने दिती है और उसकी जो व्याख्या भाई गुरुदास ने की है, उस पहलू नु छुए बिना ये सारी विचारधारा अधूरी रह जाएगी। उंज भी युगां दी ए वन भारत दे ऋषि मुनिया ने ही की, और ए एक प्रबल सच्चाई है कि धर्म दा बहुत गहरा बोध मनुख दे मानसिक मंडल दा बहुत गहरा अध्ययन जो इस देश दे च होया है और किधरे भी नहीं होया। इस वास्ते बड़े गहरे ऋषि इस देश ने पैदा किए, धर्म दा बहुत वड्डा साहित्य इस देश ने पैदा किया, कितने अवतार कितने संत कितने महात्मा कितने भगत इस देश ने पैदा किए भरे होया है। ये देश भक्तां नाल संतां नाल अवतारां नाल गुरुआं नाल। इसनु ऐसा कह दईए कि वाइब्रेशन इस देश दी ऐसी सी, माहौल इस देश दा ऐसा सी, संत पैदा हो रहे सन, भगत पैदा हो रहे सन, अवतारी पुरुष आ रहे सन। इस देश दी महिमा अज भी उना अवतारा करके है, अज भी उना भगतां करके है। चार युगां दे अवतारा दी रूपरेखा भट्टां दी बाणी विच इंज दर्ज है। भट्ट कहिंदे ने सत जुग तै माणियो छल्यो बल बावन भायो, त्रेते तै माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापुर कृष्ण मुरार कंस कृतारथ कियो, उग्र सैन को राज अभय भगतें जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चले अटल आत पुरख पुरमायो। सतयुग देख 52 बोने अवतार त्रेते देख श्री कृष्ण रंसी द्वापर देख श्री कृष्ण यादव वंशी और कल युग देख धन गुरु नानक देव जी महाराज बेदी वंश देख उजागर हो। समय की रूपरेखा विच भट्ट अवतारा इस तरीके दे नाल मंदे ने और समय का बैरूनी प्रभाव जन्म साखी विच इंज चित्रिया होया है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने बाले नू मरदाने नू समझांदे ने ये युग कैसा है। जे बैठा ता आखिए बैठा 70 घट जे चलना ता आखिए छार गया सित घट। जे मैं चलदा ते कहंदे ने इते सिर देते छार पा के चला गया मिट्टी पा के चला गया ते जे मैं बैठा रहा ते लोकी कहंदे ने इते बस 70 बैठ गई बैठा होया 70 मल के ही बैठा होया इते सिर्फ बैठा ही रहंदा है। जे बैठा तै आखिए बैठा 70 घट जे चलना ता आखिए छार गया सिर घट। जे बोला ता आखिए बड़बड़ करे बहुत चुप रहा ता आखिए ऐस घट ना ही मत। जे मैं बोलदा ही नहीं खामोशी धारण कर लेना तो कहंदे ने इहदे कोल कुवत गोयाई नहीं है इहदे कोल बोलण दा ढंग नहीं है इहदे कोल अकल ही नहीं है। पर जे मैं मौका महल गल करा बातचीत करा ते कहंदे ने ते बड़बड़ करदा पै बस बोली जांदा है बोली जांदा है। जे बोलां ता आखिए बड़बड़ करे बहुत चुप रहा ता आखिए ऐस घटना ही मत। काई गाल ना मेवने करता ही रखे पत बस दुनिया दा कम हो गया है निंदा करने और निंदा करन लेगी बहाने लबने। चल रहा है मनुख ले खाक उड़ा के चल रहा है बैठा है मनुख बस बैठा ही रहंदा है बोले बड़बड़ करदा पे चुप है मूरख है गर्स के निंदा करन दे बहाने। इस युग दे जन्म साखी दे कथन अनुसार निंदा चरम सीमा ते है और मनुख कदम कदम दते निंदा कर रहे है और निंदा करन दे बहाने लभदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक कहंदे ने कि ऐसी आदत बन गई है इस युग दे च निंदा दी कि हुण इस दा कोई इलाज भी नहीं है। औखद सबे की त्यन निंदक का दारू ना है। निंदा ऐसी जहर है ऐसी कुड़त्तन है जिस नाल मनुख दी जबान इतनी कौड़ी हो गई है इतनी कौड़ी हो गई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने तुम्मी तुम्मा विस अक धतूरा निम फल मनमुख वसें तिस जिस तू चित ना आवे। हे प्रभु मनुख ऐसा निंदक हो गया है और उसकी रसना झूठ बोल बोल के इतनी कौड़ी हो गई है कोई तुम्मा इतना कौड़ा नहीं निम इतनी कौड़ी नहीं जहर इतनी कौड़ी नहीं जिड़ा ओ हिरदा कौड़ा है जिस विच तो नहीं है ते सिर्फ निंदा ही निंदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान कर देने दौलक दुनिया वाजे वाज नारद नाचे कल का भाव जति सती कह राखे पाओ। इस युग दे च मन ते नारद बन गया है ते नारद दा कम की है चुगली ਇਧਰ ਦੀ ਉਧਰ, ਉਧਰ ਦੀ ਇਧਰ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨਾਰਦ ਹੈ, ਨਾਰਦ ਨਾਚੇ ਕਲ ਕਾ ਭਾਉ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਹਿ ਰਾਖੇ ਪਾਉ। ਇਹ ਜਤ ਤੇ ਸਤ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਟਿਕਾਵੇਗਾ? ਮਨ ਤੇ ਨਾਰਦੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮਨ ਤੇ ਚੁਗਲ ਬਖੀਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰਬਲ ਨਿੰਦਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਰੂਨੀ ਅਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਭੀੜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ। ਇਤਨੀ ਨਿੰਦਾ ਔਰ ਇਤਨਾ ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿੰਦਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਨਾ ਝੂਠ ਔਰ ਇਤਨੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ, ਇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਨੇ ਫੋਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਔਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ, ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭੀੜ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦਰਅਸਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕੌਲ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਨੰਦ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੀੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਗੀਟੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਆਮ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਹੀਰੇ ਤੇ ਕਿਧਰ ਕਿਧਰੇ। ਸੰਖ ਤੇ ਸਿਪੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਤੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ। ਜਿਤਨੇ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਚੋਂ, ਉਤਨਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਕਲਯੁਗ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਭਰਿਆ ਯੁੱਗ, ਔਰ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਭੀੜ, ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਲੇਸ਼ਮਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਭੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਨਾਰਦ ਨਾਚੇ ਕਲ ਕਾ ਭਾਉ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਹਿ ਰਾਖੇ ਪਾਉ। ਨਾਰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਤੀ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਵੇਗਾ? ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਗੰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਕਬੀਰ ਆਪਣੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪੁਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਮਰਮ ਕੋ ਪਾਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। बार बार जन्म होंदा रहा है और जन्म होंदा रहा है वासना करके। जितने चिर तक वासना है जन्म चलता ही रहेगा, जन्म मरण उस दिन मिट जाता है जिस दिन वासना प्रार्थना का रूप धारण कर लवे। कहिंदे ने मन ऐसा है या वासना चलेगी या प्रार्थना चलेगी। जिस दिन मन प्रार्थी हो गया और इसके अंदर हर वक्त प्रार्थना चलन लग पई और प्रार्थना में शुकराना धन्यवाद हे प्रभु तेरा धन्यवाद, उस दिन जन्म मरण दे ए गेट मिट जाते ने। पर वासना तो चलती है, अगर वासना पिछले जन्म दे च नहीं सी तो हुण दा ए जन्म भी नहीं हो सकता। इति वासना बद्धा आवे जाए। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं जुग जुग मेर शरीर का, हर युग देच ए मेरा मेरू शरीर, ए महान शरीर मनुख मनुखी तन बार बार आउंदा रहे है। अक्सर पुन ते पाप दोवें बराबर होवन तो मनुख दा अगला जन्म मनुख दा ही आउंदा है। पाप ही पाप होन पुन ना होवन तो मनुख पछड़ जांदा है, पिछे मुड़ जांदा है। पर ऐसा कि कोई पापी नहीं कोई थोड़े बहुत पुन ना करदा होवे। कबीर सच कह रहे ने पाप पुन दोए बहल बिसाए पवन पूंजी परगासियो। मनुख स्वासां दी पूंजी नाल कुछ पाप खरीदता है कुछ पुन खरीदता है, तो पाप पुन बराबर होण करके मनुख दा बार बार जन्म मनुख दा ही आउंदा है। और करीबन करीबन यही चांस है कि मनुख मर के मनुख होवेगा, क्योंकि पाप करदा है जीवन दी लालसा करके पुन करदा है इस जीवन तो मुक्त होने वास्ते। पर चूंकि दोवें कर्म बराबर रह जाते ने तो बार बार मनुखी जन्म उपलब्ध होंदा है। तर्जे जिंदगी दे तौर तरीके जो बदलते ने, इस तब्दीली नूं धन गुरु नानक देव जी महाराज जिस ढंग नाल बयान करदे ने मैं अर्ज कर रहे हैं।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

जब आकार ही नहीं है तो तू सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अरूप है, अनूप है। इस चीज का पता कदों चलता है? जब मनुख थोड़ा जहा अपने नेड़े आता है। तो मैं फिर दोहरा देवा, एक मनुख जितना पदार्थ दे नेड़े अपने नेड़े नहीं, पदार्थों बारे बहुत कुछ जानता है, एक विज्ञानक बहुत कुछ जानता है। मनुख जितना परिवार दे नेड़े अपने नेड़े नहीं, परिवार बारे बहुत कुछ जानता है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। एक मनुख जितना पत्नी दे नेड़े है अपने नेड़े नहीं है, पत्नी बारे बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानता। अपतन काल जो करे विचार, तिस जम कंकर नहीं करे ख्वार। मनुख इतना बार मुखी क्यों हो गया? धार्मिक मनोविज्ञान कहता है बार जो ये पदार्थ का जगत है, अपने अनुकूल करना है, हवा नु अपने अनुकूल करना है, पानी नु अपने अनुकूल करना है, धरती नु अपने अनुकूल करना है, अग्नि नु अपने अनुकूल करना है। जो मेरे अनुकूल नहीं है उस तो मैं सुख नहीं ले सकता। मैं बंदे नु अपने अनुकूल करना है, मैं हुक्म कीता ते उनु मनना पै, मनना। इको ही मनुख हुक्म मनदा है, बाकी नहीं, वो नौकर है। सारा देश हुक्म मनदा है, हुक्मरान है, हुक्मरान है, ये राजा है, ये बादशाह है। अजय मेरा हुक्म सिर्फ एक ही बंदे ते चलता है, जो मेरा मुलाजम है, जो मेरा नौकर है। अंदर पीड़ा रहती है, इससे ते मेरा हुक्म चलता है, बाकियां ते नहीं, बाकी नहीं मनते। हुक्मरानी का जन्म इत्थों होया। मैं सिर्फ पदार्थ नु ही अपने अनुकूल नहीं करना, सिर्फ हवा ते पानी नु ही अपने अनुकूल नहीं करना, मैं मनुखा नु भी अपने अनुकूल करना। धर्म का जन्म उना लोगों ने उसनु जन्म दिता, ते इस समझ नु जन्म दिता कि जितने चिर तक मनुख अपने आप नु परमात्मा दे अनुकूल नहीं करता, परमात्मा तो आनंद नहीं ले सकेगा। जितने चिर तक मनुख पदार्थां नु अपने अनुकूल नहीं कर सकता, पदार्थां तो सुख नहीं ले सकता, जिन्ने चिर तक अपने आप नु परमात्मा दे अनुकूल नहीं करेगा, आनंद नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। किवें अपने आप नु परमात्मा दे अनुकूल करिए, ये मैं कल थोड़े सामने खोलण दी निमाणी कोशिश करांगा। इन्हां पंक्तियां नु आधार बना के गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराले। नहीं ते हंकार दा एक बीज नहीं है। मैं दोवें पंक्तियां आप नु सरवण करावां ते समाप्ति। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते। ज्ञान ते इस वास्ते सी भगवान दे नेड़े जाइए, ज्ञान ते इस वास्ते सी निरंकार दे नेड़े जाइए। ज्ञान हंकार दे नेड़े लेके चला गया, गुस्ताखी वाह, जितना वड्डा ज्ञानी उतना वड्डा हंकारी। मैं ऐसा देखे हंकार नु टिकन वास्ते ज्ञान चाहिदा, अज्ञान दे आसरे ते हंकार नहीं खड़ा होंदा। दान दे आसरे ते हंकार खड़ा होंदा, चोरी दे आसरे ते नहीं। एक मनुख कह सकता है मैं माड़ा मोटा दानी नहीं, बहुत वड्डा दानी हाँ। भरी महफिल दे किस तरह कह सकता है मैं माड़ा मोटा चोर नहीं हाँ, बहुत वड्डा चोर हाँ, किवें कहेगा? चोरी ते हंकार की खड़ा होएगा, दान ते हंकार खड़ा होएगा। यह भी मैं अर्ज कर सकता। इसे तरीके नाल गिनती करते जाना, गुणा दे ते हंकार अपनी यात्रा करता है। एक बीज नहीं है इस हंकार का, हंकार दे हजारां बीज ने, और हजारां बीजां तो पैदा होंदा है। प्रकृति ने हर फल दा बीज एक बनाया है, लेकिन हंकार दे हजारां बीज ने। तो मैं फिर दोहरावां, अपने आप नु जितने चिर तक मनुख परमात्मा दे अनुकूल नहीं करदा, परमात्मा तो आनंद नहीं ले सकेगा, परमात्मा दी शक्ति उसनु नहीं मिल सकती। जितने चिर तक पदार्थ नु अपने अनुकूल नहीं करदा, ये पदार्थ तो भी सुख नहीं ले सकता, कतई नहीं ले सकता। यह खुलासा मैं थोड़े सामने बाकी कल करांगा, इत्थे ही समाप्ति।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: Family Care Pharmacy.
2: पूरे BC विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudalebaudgroup.com.